एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: सुनिए ना, आइए हम लोग आने में 8 बजे का छा
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: समीचियो 14 के में बोदे लोटी पड़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखाई हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आंगी समझो लोटरी पर दियो छामताई गुदी
1: भर दी आ भर दी बा लोटरी खाली पर दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनै बनी खै बिसा खै मै विश्वास आनन फोनै खाले पनि आफै विवरण खै मै आपिन खबै बनी वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खै मै आरी सुमी बैंक आफै बनी आरी
3: सतर्कता न ठगि सक्या फसेना
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

0: Blessings to all.
1: सामाजिक सञ्जालजी छ्यानले झाँझी मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उहिसो सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना URL चेक लना आख्याबा घटना तल आपिबै लागि समय समय री आफैना पासपोर्ट फेरदिल परे मो नुए टोए तारी शङ्ख लैदी विषा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।